अरे वाश बेब तो तुष्माले आई थी बेंतो लवियानो आन बेतु ना थी जजीरा अब आप इतने भयदा बलिम भरे हो फिर आप उन इस्तेमार इमोटा न दिए हो इमासे इमासु अब न तमंदी की न बेन ओदोर बरू शेखु अरे कुरान इकतीन ओदीन इकतीन बेतु ना थी दाए उन बरू गेन रबे हो या किसी ऐ आन इरबी थो या किया है इन एंदा बली बिबई बाई ये गद इंगा दे उन्होंने गदोक न है आन गदोक न इंगे दंदी आन इन एंदा इंबरे गदोक न मूट अंदे दे बेन ओदोर उनो म्याद इदियो बेन तोय अमीर क्वास न उन शर्गी दा अमीर क्वास न इदुन शर्गी दा उन बरु दिफा ता बेन तोय भाशियो उसो की हुआ आन उन शरिक कसियो उन बरियो आन देश दिया ता आन धायो कहा ता यह जमाता इन इंदा अमूट आए बेन ओदोर अर्थमंदिक न इकरफ ए भाषी उदा तो उसो की वो शर्गी दा ए उन्दा उनो धई लिम्मा मिया